आपको बाखबर, हर खबर से खबर वो जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अम।

0: नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालय। द मरगानो फागो आवाजुना आओ द फिजा ताजा सुकून। दा वक्ते चिखपल जरत सुकून वरकड़े अखपल व्रस बख सोच सरा पेल कड़े। राजे चे यूशु द खुशाले द मुस्का औ मुस्बतु खबर सरा। तासो अवरे रेडियो अमन 88.4 करक।
1: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
2: ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों, ओजरियों और दीगर बकायात गैर मुतय्यन शुदा जगहों पर हरगिज न फेंकें। ये अमल बदबू, तअफ्फुन और वबाई अमराज का सबब बनता है। मजीद बना खुली जगहों पर फेंकी गई आलाइशें गिद्धों, कौवों और दीगर परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, जो सिविल एविएशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और फिजाई ऑपरेशन के लिए संगीन खदशात पैदा करती हैं। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर की जानिब से फराम करदा बैग्स में आलाइशें बंद करके अपने घर के सामने रख दें, ताकि मुतलका सफाई का अमला उन्हें बरवक्त उठाकर मुकर्रर जगहों पर मुंतकिल कर सके। बराए करम सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं, माहौल को आलूदगी से महफूज रखें और अपने शहर को साफ सुथरा रखने में इंतजामिया का साथ दें।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
4: मसाइल का हल हो या सेहत करार, बैक टू बैक हो या खबरें, रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
5: हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे।

हमारे शराबे हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।

0: रेडियो मनाटा से 4.4 खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।
1: त्योहार है खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है ये सबका है।
2: السلام علیکم زیم تاریخ عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشحالی ډیر مبارک شه۔

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे परीशा खान। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले की बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते रहिए रेडियो उमन 88.4 पर। रंग आमन
1: मुबारक।

देखिए और इधन को था गुल गुल एंड बुलबुल आवाज रेडियो मनाटासी शरीर चल कर रखता है मौत अवेले खे से आज रास के योजली भी हाजिर शोलूं तो से सरा बिल्कुल ईद मैराथन ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स के ईद पॉपुलर है इस मने

0: ओके जी, तो सह काल रोता कवल है 0927-292-292 देर देर कलू नंबर से मिला गुरु मनीष कलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दासुक दिस रकीम से ना ए अबूज दी कुम काम रुचि अबूज दी ना रुचि का ना ना ओस खा ना रुचि ओस खा काम दा ए वो से लश्की गुजरा वकड़ला लश्की चका चका वजा
1: गजा
0: ए वो से लश्की विने लश्की चका वजा गजा दले जा बिल्कुल ठीक किया सो करू सर खबर की किम जी ना। अच्छा मरवा वजीर चरंगे दा शादा ए छोटी मरवा उस दे ढेर काम दा छोटी मरवा का मो उस सीधा बोलो तो वह कहना ची ईद मो चरंगे वकड़ तुस्त ईद डे डेर मुबारक साहिदा डेर जनती शे स्तर शे लोया खजा शे लोया शजा शे निका माल शे इज्जत मन शे कदर मन शे आमीन मीने सही दुआ गाने में तो कहू सा जब को ठीक ठाक के दारू तो वह छे आल तक गर्मी स्टाक है नस्ता सही सही आइसक्रीम दी खोल ली के ना आई नौ और वहां तो खबर आई ना पाई जो वो उस दे देर काम दा ए वो उस लश्की गुजारा कभी हाँ हाँ हाँ अच्छा दुमरा डेर आइसक्रीम दे खोल ली थी सही सही बस लश्की ख्याल भी सकाओ ची घोड़ा मनुष्य खारो पशा आइसक्रीम कले कले घोड़ा खखारो पवी सही नोरा तो सही हो ए अवोज डेर काम दा डेर काम दा ओके जी बिल्कुल ची सोरा खा आगा सिस्टर्स दिया अगोता छोटी मरवा ची दा आगा वास काम दा कना तो से शायद नवी बरे दला खो छोटी मरवा गो टोलो तसलमुने खवियाई सिस्टर ता ओ ईद मुबारकी खवे तवियाई ओ सोरा ची बाजी दिया अगोता खवियाई सही दा ओके जी दिकाल का वालो यो जहान मनना थैंक यू धावा मिश्रा छोटी मरवा गोल लंडी जलंधर ना खाबू जी डेर काम हो छोटी मरवा दे काल का बोलो ये जहान मनना लो या खजा शी शाह मैनेजर से बनी लो या खजा शी गुरु बनेक्स कलर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब सो खबर के वही किम सुई नाम आवाज़ इतो से हाँ काम दा आवाज़ मुकाम दा ना ना रूसी आवाज मो ना रूसी देर पो माजरत सर जा ना पे पैजा आए है या हम सिग्नलो इशू था या चे कि मैं दा मोबाइल मो खराब था या चख इशू दा खो आवाज मो ना रूसी ए वो सजा वो वो देर काम काम ये वो वो सुकर सा खबर के किम जिना ओए होए डेर पो माजरत सर खोरे के छ खफा ने शिकन दस चलो के कने छ यूज ले बिया ट्राई वके शायद छ आवाज दे सही सी सही शवा दे काल कवर यो जहान जानवरी ले लो खोरे के खबर रेडियो में आवाज हो रे के डेर पो माजरत सर है तो से आवाज न रुत ललो।

0: रेडियो मराठासी 4.4 खरक के तमाम सुनने वालों को आज रास खीकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।
1: त्योहार है खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है ये सबका है।
2: السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمال طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजी लाइव बनू। रेडियो मन की जानिब से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो।
1: मुबारक ईद मुबारक।
0: ईद की खुशियों में शामिल हो हमारे साथ और रेडियो मन सुनते रहकर। रेडियो मन 88.4 नेट।
1: ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम,
0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे फैशा। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों की बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते रहिए रेडियो मन 88.4 करेक्ट।

ओके जी, नेक्स्ट भाई का ना छे, मुझे भी ईदी चाहिए। तारिक भाई को स्पेशली ईद मुबारक जी मना है। ओके जी, ईदी ले ले जी, जिसने भी ईदी लेनी है ले ले। आन दायर दे हवा पे चपो मने में ईदी दागा जी दागा ना ओखले जी सोखा ओखले दे हवा पे चपो मने ईदी। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। बार का लेंगे मैसेज, सॉरी मैसेज, सलामुना एंड अख्तर मुबारक। शाइम नादिया बहार जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह जी, खैर मुबारक। लोया खजा शिनादिया बहार इज्जतमंद शेख दरमन शेख।

फ्रेश वे देख रहे नवरंग उदयन इलावा गलेशे पनावरंग से तुसिता शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट मिलावीशी देने अलावा तुसिता 22 ग्रेड शॉपिंग सेंटर सरा मिलावेदाईशी देने अलावा पौनेशे तुसिता मिलावेदाईशी गुल मोहम्मद बाज मोहम्मद इत्तेफाक होलसेल डीलर सरा पौनेशे बिल्कुल दिकुंदाई।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आजिब शाहान। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों की बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। सुनते रहिए रेडियो उमन 88.4 पर रंग अमन। मुबारक
1: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये। रेडियो मराठा से शारदा चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास्की की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।

0: रेडियो मराठासी शहर चार खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेके की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।
1: त्योहार है खुशियों का है त्योहार, न तेरा है न मेरा है ये सबका है।
2: আসসালামু আলাইকুম, জয়মা গোল্লা, তাসুতা দ রেডিও আমন 88.4 কারক লা তরফা দ লোই আখতার লোই খুশালে ডেরে ডেরে মুবারক শাহ।

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक।

किलो ची दह पल किलो ची रेगुलर साइलेंट लिसनर या वो साइलेंट लिसनर बिल्कुल डेर जूता मनना के शुक्रिया के इंजीनियर भाई सीधे साइलेंट लिसनर दाई डेर जूता शुक्रिया था कि वो साइलेंट लिसनर डेर जूत सही और साइलेंट लिसनर चिकन लिखे ना आगे तक तवज्जो वर के भी मनना की शुक्रिया की और वे यो दाशिर ने वर्सल के लिए ना माँ सर एडवांस के नंद ईद मुबारकी होगा दे ईद द कुर्बानी यार तहम मुबारकी होगा माँ सर एडवांस के दख्तर मुबारकी होगा बिल्कुल दस शेर ने यानी परसिद किम पचीड़ बने लिखी ली क्या ना नो बिल्कुल दा मेरे शामिल कर सही तो मैं बिल्कुल चिदा का अच्छा हाँ दगली सर तक गिफ्ट लड़ला भी वो बिल्कुल अखबार तरफ ना ऐसा ढेर ढेर यानी ख्वाहिश जनक ढेर जुट सी किम ने कहना ताई ना को इस उम्र हाँ शुक्रिया रखा बिल्कुल दादा से मिस्टर लागी कहता गिफ्ट तो मुझे मुंह तर लड़ले भी नो यो जहान मना

बिल्कुल नवी संद्र में ईशी वे खुदा पतन लगी खुदा चिरता रुना तली दी हिम जिसे दी अब्बास खेर दाई खेर दाई खेर दाई खेर दाई मिला उसी सही तो खुदा से न तो कहना अंत के वे के कल हाँ इवानी मादा से चार सदे कड़ी इस सदे संबल कड़ी भी आगा क्या स्थापन माली मी और चत कहना माली मी डो आगा क्या स्थापन माली मी चिरता दिशे भी ना बिल्कुल जनान सी ना पते कीड़ी No, Baron Falwaka, Uzai, or Sarawirwe, told everything, told listeners.

बिल्कुल अर्जिंग प्रोग्राम से गप ना मुछले है रवंद है और बिल्कुल प्रोग्राम से स्टूडियो था स्टूडियो से यानी यानी यानी यानी यानी यानी देखो डेर ये कहना ये कहना लासो के प्रोग्राम से भी कहना और बस जोर से भी कहना फिर दे 12 बजे से प्रोग्राम और सारो का बाकी से किमे कहना बाकी मिडोर था प्रदा कर 2 बजे से मुकला ओए होए अच्छा ये कहना सब ये कहना

0: पूरे बिल्कुल प्रोग्राम से नेक्स्ट कलर असलामुअलैकुम
1: असलामुअलैकुम जी भाई ईद मुबारक सा
0: खैर मुबारक सा खैर मुबारक सा और मैसेज दिखिम जिना
1: सलीम खान दिखन दखिल ना खबर
0: का सलीम खान दिखन दखिल ना प्रोग्राम शेयर कला सडी मैच वेलकम ना वेलकम ना तगी
1: मेरे शुक्रिया
0: सरंग चला खैर ये प्रोग्राम और भाई
1: हां प्रोग्राम खस द्रास के और
0: अच्छा द्रास के और द्रास के सरंग भी
1: द्रास के देर लका प वतर शौक करे और
0: अच्छा पर शौक सर और यानी प्रोग्राम ना फंदी ना मजे होने
1: मजे ने खोल बिल्कुल इंतजार में 11 बजे 10 बजे तक मैं इंतजार हूं कि सटम 10 बजे ये एनएसडी बरसी
0: बिल्कुल माशाल्लाह मनना मुकी शुक्रिया मुकी देर सुमरह शुक्रिया दे कि आ बिल्कुल काम हो जो तुसे मेरे प्रोग्राम सारा दमरज जो तमीना के वो दमरज जो टाइम चले गया ना फल कीमती वक्त मुस्तरक हुए न सुमरह शुक्रिया दे क्या काम हो
1: थैंक यू
0: अच्छा दर तो भी अब नूर प्रोग्राम से सर शामिल है
1: प्रोग्राम के खूब युवा पार्टी सर शामिल
0: है बिल्कुल अख्तर वाला
1: जी अख्तर वाला
0: हाँ जी
1: انزدی سے بھی یہ کہ اختر اختر بیا د خیر راغلی تا دیراوڑے خوشالی تا غمونا ہاں او اختر بیا په وطن راشی
0: ہاں
1: او دنه دنه عمر کی تیر شین رازینا
0: واہ زبردست ہاں
1: جی بس دا دوی تا
0: پین دیر اجو تمنا د کال کول یو جہان مننا سائل دیر اجو تمنا بالکل امیر سر د مشغول ورو کما کرنا نہ کاندنا او مبشر بهدا من بهدا بهدا

अखिल दौड़ जल के मिली गुशी गुशी पताली के अच्छा तो शो में लगा लियो टोल साड़ी में वर्क शला ओचे चिता अच्छा क्यूट सुरता ये नहीं श्रीकांत सलाम वालेकुम सलाम डेर जुता मना वैसे मैं क्यूट श्रीकांत मिट्टी भाई थैंक्स फातिमा वजीरिस्तानी ओ डेडिकेट करने के लिए ओशे डेडिकेट फॉर फातिमा वजीरिस्तानी फिर द चटोल खल खबर सी देजल अख्तर के दे नमा पलास ले के मां वहां जबरदस्त यो जहान मना बच्चा आई एम सिंग मच सिग्मा बॉय फ्रॉम डोमेल हाय हेलो हाउ आर यू आई होप यू विल बी फाइन आई लिसन योर प्रोग्राम आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम योर प्रोग्राम इज वेरी सो नाइस नाइस पर्सनैलिटी ग्रेट अर्ज ईद मुबारक आई एम सईद बिकॉज आई विल go to